सिंघाले सिंघाले जय हो नाना सुपर भाले गाड़ी आए हो जाने लाये हैं उधर हेता बाबू तेरा लेना मकान आली भागा

ये तारों में तो तिम्रो बढ़ती को चैन संबंध और सीलो लाइक तो तिम्रो जैन मोतीलो कंबटे तो बॉय मत फैन ये गोनो जाते हम लोग बोटे को गैंग सुपुंग की माता कौन गिन टैंग टैंग बताइए तुम फिर ना बोन गिन टैंग टैंग जस्ट गॉट टू कैसी तू बैठेरे लैंग लैंग ती मैं हंसू तातो गोली डैंग डैंग जाने बॉय डाउन कैसी बढ़ बढ़े मैं तोरा जबाने बिच में यहाँ कट कटे मैं कैसी बुची कर दिखता थोड़ बढ़े मैं अब तो लांस ती मैं बढ़ बढ़े मैं कटे बॉडी कट कटे बुढ़ा के बढ़ बढ़े बढ़े कुछ तो मत हल कैसा चौके तो फ्रांसी कंबोटी लो स्टोरी हम सारे चा